संगीत की इस दिलकश लहर के बाद आइए अब खोलते हैं आज का दिल का मेल बॉक्स और पढ़ते हैं आपके आत्मीय संदेश। तो आइए श्रोताओं, शुरुआत करें महाराष्ट्र पुणे से। सुनील, सुषमा, अनन्या और राजवीर गायकवाड़ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थांदला जिला मध्य प्रदेश से विठल करमदिया और शोभा जी हमारे साथ

आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मजनू का टीला दिल्ली से, कमल बालूजा, मधु जी सागर और सतना मध्य प्रदेश से, उमंग मलिक, आकांक्षा और माही हमारे साथ हैं। नवान शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी भी हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना और गुरवंश सिंह जौड़ा भी हमारे साथ हैं। अनिल बुरांडे, उषा जी, अनुश्री, धनश्री हमारे साथ हैं और बलहारशाह से सूरज लोंढे, प्राची और एक लव्य भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इनकी फरमाइश पर एक और रोमांचक गीत।

संगीत ने तो माहौल सजा दिया और इस सुबह को बहुत ताजा कर दिया है। आइए अब देखते हैं फिर कि आपने हमें कौन सी भावनाएं भेजी हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश ककनेजा, पूनम जी, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा हमारे साथ हैं। आपको भी हमारा राम राम, राधे राधे और नमस्कार। रेडियो सिर्फ एक माध्यम ही नहीं बल्कि भावनाओं, संगीत और यादों का अनमोल साथी है। अजीत कसाना जी, माया देवी ऋतिक और आदित्य कसाना हमारे साथ जुड़े हैं मुरादाबाद से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन हमारे साथ जुड़े हैं। FM गोल्ड में इनको अपनापन महसूस होता है और हमें भी आपके संदेशों में वही अपनापन मिलता है। भागवती पुल प्रहलादपुर नई दिल्ली से संदेश हमें प्राप्त हुआ है। गंज डंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी हमारे साथ जुड़े हैं। आपकी जिंदगी का भी हर लम्हा उतना ही खुशनुमा हो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुरमीत सिंह मेहता साउथ एक्सटेंशन से हमारे साथ जुड़े हैं। नैनीताल उत्तराखंड से भास्कर जी हमारे साथ हैं। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इनकी फरमाइश पर एक और मधुर गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दिल का मेल बॉक्स आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, लौटेंगे तुरंत ही संगीत की इसी प्यारी रवानी के साथ।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स में आप सभी के मनपसंद गीतों और संदेशों के साथ। तो श्रोताओं, अभी भी नहीं लिख के भेजा है तो जल्द ही भेजिए अपना मनपसंद गीत, अपना संदेश, अपना नाम और कहां से लिख रहे हैं, और भेज दीजिए हमें fmgoldairdelhi@gmail.com पर या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए 9868867533 पर। तो आइए फिर चलें उन सुरों की ओर जो हम आपके भेजे खतों से बटोर कर लाए हैं, पर उससे पहले कुछ और खत भी पढ़ लिए जाएं। प्यार भरा आदाब आपको भी हमारा। नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम, यशफ और रसीद वारसी लिख रहे हैं हमें मारहरा दरवाजा एटा से। योगेश शर्मा फरीदाबाद से हमें सुन रहे हैं।

पारस मणि रेडियो श्रोता क्लब हमारे साथ हैं बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से बाबूराम जयपाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मानेसर हरियाणा से अंजुम हमारे साथ हैं। कौन चौकताशी हमारे साथ जुड़े हैं लद्दाख से, इन्होंने भी हमें अपना प्रिय गीत भेजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार, माधुरी सिंह, मोनिका, आराध्या सिंह, राघव, माधव, सार्थक, अनंत और कायरा हमारे साथ जुड़े हैं अंबेडकर कॉलोनी ढोकली जिला मोहाली से। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये मधुर गीत।

श्रोताओं, आपकी संदेश ही इस कार्यक्रम की सबसे सुंदर धड़कन है। तो आइए विराम लेने से पहले देखें थोड़े से और संदेश, और उससे पहले आपको बताएं कि आपके संदेश, अनुरोध और संवेदनाएं ही इस कार्यक्रम की रूह हैं। हमने अपना प्रेम और प्रोत्साहन ऐसे ही भेजते रहिए, हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है। समय की सीमा के कारण कुछ संदेश आज शेष रह गए, लेकिन वो हमारे मेलबॉक्स में सुरक्षित हैं और आने वाले कार्यक्रमों में उन्हें भी आपके बीच लाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो फिलहाल देखते हैं किसने लिखा है हमें कहां से। शीशपाल लिख रहे हैं हमें गाजियाबाद से, मुलापुर दाखा से, राजेश, बिट्टू और संजीव हमारे साथ हैं, शिवाजी चौक कटनी से, अनिल, अमर, दिलीप, राजू, रजन, संजीव, विपिन, अरुण, संजय, सोनी, पवन, सुनील, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके मम्मी पापा हमारे साथ हैं। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी, प्रिंस, सीताराम और साहिल हमारे साथ हैं, राम नरेश, रेखा, अल्पेश, सृष्टि, सवि हमारे साथ हैं, हनुमान मंदिर दिल्ली से, डीडी रॉय और बेबी रॉय हमारे साथ जुड़े हैं, जलवायु विहार ग्रेटर नोएडा से, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी सुन रहे हैं हमें शांति नगर सोनीपत से। आपके प्रिय संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदा फारजू, जूही, इमरान, बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी और आशु हमारे साथ हैं, बहादुरगढ़ हरियाणा से अनिल आनंद अरविंद हमारे साथ हैं, उत्तम नगर से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका हमारे साथ हैं, निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और आयान भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो श्रोताओं, हाथ छुड़ाए जाते हैं अक्सर, रिश्ते नहीं छुड़ाए जाते। मिलते हैं फिर समाचारों के पश्चात 11:10 पर और चलेंगे नंदी हिल्स की सैर पर कार्यक्रम तस्वीर में। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz के साथ। फिलहाल मेरा नमस्कार।

0: सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपये तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रूपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रूपये से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रूपये या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रूपये प्रति लेनदेन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई क्षेत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक दिन के दौरे पर बिहार जा रहे हैं। श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परम्परा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया जा रहा है। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600-600 सैनिक भाग ले रहे हैं। ये अभ्यास औली के साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत रत्न से सम्मानित महान साधिका ने अपनी दिव्य स्वर साधना से भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्वभर में गौरवान्वित किया। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने वाली एक ढाल है। केरलम में अर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली में भी आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

कर्नाटक की धरती पर एक ऐसी पहाड़ी है जिसकी भोर अपने भीतर एक अलग ही आकाश संजोए रहती है, नंदी हिल्स। समुद्र तल से 1478 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये पर्वत शिखर कभी नंदी दुर्ग तो कभी आनंद गिरी के नाम से जाने गए। बेंगलुरु से निकलकर राह जब चिकबल्लापुर की ओर बढ़ती है तो मैदानों का विस्तार धीरे धीरे पहाड़ी ढलानों में बदलने लगता है। धुंध से घिरी ऊंचाइयां, पुरानी प्राचीरें और मंदिरों के शिखर, नंदी की पहचान इन्हीं परतों से बनती है। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं प्रियांशी भटनागर आज आपको लिए चल रही हूँ नंदी हिल्स की इसी सुरम्य धरती की ओर, आपके प्रिय कार्यक्रम तस्वीर में।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं प्रियांशी भटनागर आपके साथ जुड़ी हूं कार्यक्रम तस्वीर में और ले चल रही हूं आपको नंदी हिल्स की सैर पर। नंदी दुर्ग की प्राचीरों के बीच से आगे बढ़ते हुए नंदी का इतिहास टीपू सुल्तान के समय तक आता है। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने पुराने दुर्ग का विस्तार कराया और नंदी उनकी ग्रीष्मकालीन शरण स्थली बना। यही ताश के जन्नत का निर्माण आरंभ हुआ जो टीपू के समय में पूर्ण हुआ है। दुर्ग से कुछ ही दूर योग नंदीश्वर का प्राचीन मंदिर है और नीचे दूर तक फैला कर्नाटक का भूदृश्य। बाद के वर्षों में अंग्रेजों ने भी इस पहाड़ी की शीतल जलवायु को अपनाया और यहाँ अपने आवास तथा उद्यान विकसित किए। इतिहास की ये परतें आज भी नंदी की हवा में अलग अलग ऋतुओं की तरह उपस्थित हैं, एक के पीछे दूसरी, और हर परत अपने समय की कोई ना कोई स्मृति संजोए हुए है।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

टीपूस ड्रॉप नंदी की उन ऊंचाइयों में से एक है जहां खड़ी चट्टान के किनारे से दृष्टि दूर तक फैले मैदानों में उतरती चली जाती है। इस स्थान का नाम उनसे जुड़ी ऐतिहासिक स्मृतियों में मिलता है और आज ये नंदी हिल्स के प्रसिद्ध दृश्य बिंदुओं में है। और यहाँ भोर उतरते देख रहे हो तो कुछ पल इस दृश्य के पास ठहर जाइए। पूर्व दिशा में उजास की एक सुनहरी आभा उतरती है। दूर की पहाड़ियां उस प्रकाश में अपनी नीली परछाइयां समेटती हैं और नीचे फैली धरती क्षण भर में अंधेरे से निकलकर अपनी पहचान पाने लगती है। सूर्य तब क्षितिज पर आता है और लगता है नंदी की ऊंचाइयों ने रात भर जिस प्रकाश को संभाल रखा था वो अब धीरे धीरे संसार को सौंप रही हैं। यही है नंदी की भोर, प्रकाश का धीरे धीरे आंखों के सामने लिखा जाता हुआ एक पृष्ठ।

भोर की उजली निस्तब्धता से आगे बढ़ें तो नंदी का एक और रूप धीरे धीरे खुलता है, हरियाली, जल और खुले आकाश का। पहाड़ी पर स्थित अमृत सरोवर उस दृश्य के बीच ठहरा हुआ एक शांत जल चित्र है। आसपास की पगडंडियां और ढलाने पैदल भ्रमण, ट्रेकिंग और साइकिलिंग के लिए आमंत्रित करती हैं, और खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग नंदी की ऊंचाइयों को एक और आयाम देती है। फिर पहाड़ से नीचे उतरते हुए दृश्य बदलने लगेगा। खेतों और बागों के बीच आपको अंगूर की बेलें दिखेंगी। यही नंदी घाटी है, जहां अंगूर की खेती ने वाइन निर्माण के लिए नई पहचान भी बनाई। आसपास की वाइनरीज में पूर्व निर्धारित समय पर भ्रमण और वाइन निर्माण को समझने का अवसर भी मिलता है। इस धरती की पुरानी पहचान रेशम और कृषि से भी जुड़ी है। पहाड़, खेत, अंगूर की बेलें, गांव का जीवन, दक्षिण भारतीय नाश्ते की सादगी और फिल्टर कॉफी की वो सुगंध। नंदी की यात्रा तब केवल एक पहाड़ी की यात्रा नहीं रहती, वो उस पूरे भूदृश्य से परिचय बन जाती है जो शिखर से लेकर घाटी तक अपना स्वर संजोए हुए है।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप तस्वीर। आज मैं प्रियांशी भटनागर आपको ले चल रही हूं नंदी हिल्स की सैर पर। तो आइए श्रोताओं, अब जरा यात्रा की कुछ जरूरी बातें भी कर लें ताकि नंदी हिल्स की ये सैर आपके लिए उतनी ही सहज हो जितनी सुहानी। बेंगलुरु से नंदी हिल्स लगभग 60 किलोमीटर दूर है, इसलिए सड़क मार्ग यहां पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है। चिकबल्लापुर तक रेल से पहुंचा जा सकता है और वहां से आगे सड़क मार्ग लिया जा सकता है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी नंदी हिल्स के निकट ही है। सुबह जल्दी पहुंचना यहां के अनुभव को और भी सुंदर बना देता है, पर ध्यान रखिएगा सप्ताहांत और छुट्टियों में भीड़ बढ़ सकती है, इसलिए यात्रा की योजना थोड़ा पहले बना लेना सुविधाजनक रहेगा। पैदल घूमने या ट्रैकिंग का मन हो अगर आपका, तो आरामदायक जूते और पानी साथ रखना नहीं भूलिएगा। सुगम्य भारत अभियान के तहत पर्यटन स्थलों को दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए अधिक सुगम और बाधा मुक्त बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। नंदी हिल्स में भी पहुंच सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास इसी दिशा का हिस्सा है। और यदि नंदी की सुबह देखना एक अनुभव है, तो ढलती शाम को भी इस पहाड़ी पर कुछ देर ठहरिएगा। सूर्य के नीचे उतरते ही दूर तक फैली पहाड़ियां धीरे धीरे अपनी रेखाएं बदलती हैं और दिन का उजाला कर्नाटक के इस विस्तृत भूदृश्य पर एक शांत सी

श्रोताओं, यदि नंदी हिल्स के आसपास थोड़ा और घूमने का मन हो आपका तो चिकपल्लापुर और उसके आसपास भी कई और सुंदर जगहें हैं। ट्रैकिंग के लिए आप स्कंदगिरी जा सकते हैं। अपने पुराने दुर्ग के अवशेषों के साथ इतिहास के लिए देवनहल्ली का किला है। और कुछ अलग देखना चाहें तो पहाड़ी पर बना गुड़ी बंडे का किला भी देख सकते हैं। पास ही मुद्देनहल्ली है, जो भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया की जन्मभूमि है। शायद नंदी और उसके आसपास की धरती की यही सबसे सुंदर विशेषता है। यहाँ इतिहास किसी एक युग में ठहरता नहीं है, वो अपने रूप बदलता हुआ आगे बढ़ता रहता है।

और अब श्रोताओं, इस रोमांचक गीत के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद है जब भी आप नंदी हिल्स जाएं, तो उसकी धुंध में घिरी पहाड़ियाँ, प्राचीन मंदिरों की शांति और नंदी की वो कोमल भोर, इस यात्रा की, आज की यात्रा की कुछ झलकियाँ आपके साथ चलेंगी। अगली यात्रा में फिर किसी एक नए नगर, नई संस्कृति और नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक अनुमति दीजिए, सुनते रहिए आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रियांशी भटनागर का आपको सस्नेह नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2000 रुपए

0: से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि UPI ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी UPI भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर है। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ईरान के साथ संघर्ष को लेकर अमरीकी कांग्रेस में मतभेद बने हुए हैं। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का आखिरी मतदान हो सकता है। संघर्ष कारण होर्मोज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 331 अंक बढ़कर 74,335 जबकि निफ्टी 117 अंक की बढ़त के साथ 23,235 पर था। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय लालिमा अनेजा डैंग। Government has clarified that there will be no charges at all for person-to-person, P2P, UPI transactions, irrespective of the amount transferred. Finance Ministry said that payments to merchants up to 2,000 rupees along with transactions covered under the Zero Merchant Discount Rate, MDR, framework for

एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं आ पहुंची हूं आपकी प्यारी सी दोस्त अमित कमल। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सुन रहे हैं घर आंगन कार्यक्रम। दोस्तों इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.1 यानी 819 किलो हर्ट्ज पर भी और साथ ही इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर भी। दोस्तों मुलाकात भी जरूरी है अगर रिश्ते निभाने हो, वरना लगाकर भूल जाने से पौधे भी सूख जाते हैं। इसलिए हम आ गए हैं आपसे मुलाकात करने और ढेर सारी बातें करने और हमें है अपने रेडियो से प्यार।

ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। घर आंगन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और दोस्तों, घर आंगन कार्यक्रम में हम रोजाना बात करते हैं डेज ऑफ द डे की, और आज है ओजोन परत दिवस, ओजोन लेयर डे। आधिकारिक रूप से दोस्तों इसे इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर सन 1994 को 16 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। 16 सितंबर की तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि इसी दिन सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर पर हस्ताक्षर हुए थे। इस दिवस का उद्देश्य केवल ओजोन परत के बारे में जानकारी देना नहीं बल्कि वैज्ञानिक चेतावनियों को वैश्विक नीतियों, तकनीकी बदलाव और जन भागीदारी में भी बदलाव करना है। हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि लोग जागरूक हों। ओजोन परत सूर्य के हानिकारक यूवीबी विकिरण के बड़े हिस्से को अवशोषित करती है, और यदि यह सुरक्षा कमजोर हो जाए तो त्वचा कैंसर, आंखों में मोतियाबिंद तथा प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इस साल इसका थीम दोस्तों है ग्लोबल एक्शन फॉर अ कूलर प्लैनेट। और साथ ही आपको बता दें कि जो आम जनता है वो भी ओजोन परत को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे सकती है। वो कैसे दोस्तों? आप कार्बन से युक्त चीजों का इस्तेमाल बहुत कम से कम करें। गाड़ियों से निकलने वाले पॉल्यूशन को कम करने के लिए नियमित तौर पर गाड़ियों की देखभाल आपको करते रहना चाहिए। रबड़ और प्लास्टिक की चीजों को जलाना नहीं चाहिए ताकि वातावरण में ये धुआं ना फैले और जो पृथ्वी के ओजोन लेयर है वो परत है वो ठीक रहे। वाहनों का कम से कम, अगर आप पैदल जा सकते हैं कहीं पर तो पैदल जाने की कोशिश कीजिए। कीटनाशकों का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, इससे ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचता है। अगर आप कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो उससे नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही वृक्षों की कटाई ना करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। ये वो चीजें हैं जिनसे आप एक योगदान दे सकते हैं। तो आज का सवाल हमारा यही है कि आप किस तरीके से पृथ्वी के लिए, इस धरती के लिए अपना योगदान देते हैं ओजोन परत को सुरक्षित रखने में, आप क्या योगदान देते हैं? हमें मेल कर कीजिए। हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, आप ओजोन लेयर को बचाने के लिए अपना क्या योगदान देते हैं? तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। और ये प्यारा सा गीत आपके लिए

दोस्तों, ये गीत आपने सुना गोलमाल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। और दोस्तों, सवाल एक बार फिर से आपके सामने दोहरा देते हैं। आज का सवाल है, आप ओजोन लेयर को बचाने में अपना क्या योगदान देते हैं? इसके लिए आप नोट कर सकते हैं हमारा मेल आईडी fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके प्यारे प्यारे संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए घर आंगन कार्यक्रम। घर आंगन कार्यक्रम चल रहा है और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डीज ऑफ द डे की, और स्वास्थ्य की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। आज एक और डे है, इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डे, और ये एक महत्वपूर्ण अवसर है जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों और दुनिया भर में हृदय स्वास्थ्य को पहचानने के लिए समर्पित है। ये दिन जागरूकता बढ़ाने और बचाने के लिए, जीवन को बचाने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटरवेंशनल कार्डियो एंजियोलॉजी स्वास्थ्य में सुधार करती है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है। पहली कैरोनरी एंजियोप्लास्टी 16 सितंबर सन 1977 को डॉक्टर एंड्रियास ग्रुटजिग द्वारा की गई थी, और सितंबर 2022 में महासभा ने 16 सितंबर को इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों और संबंधित जटिलताओं के साथ ही रोकथाम और देखभाल के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मनाया जाता है। ये दिवस इंटरवेंशनल

कार्डियोलॉजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हृदय रोगों और उनके निदान और उपचार में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की भूमिका के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, ये व्यक्तियों को प्रारंभिक पहचान और समय पर जानकारी हो जाने के बाद उन्हें बताता है किस तरीके से वो अपने दिल का ध्यान रख सकते हैं। तो आप भी अपने दिल का ध्यान रखिए।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। दोस्तों, हमने सवाल पूछा था कि ओजोन परत को बचाने के लिए आप अपनी तरफ से क्या योगदान देते हैं, और हमारे पास हमारे रेगुलर लिसनर हैं नवीन भाटिया जी। उनका मैसेज आया है, वो लिखते हैं कि घर के पास वो पार्क में

उसमें एक प्लांट अवश्य लगाते हैं, एक पौधा जरूर लगाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है नवीन भाटिया जी, ये प्रोत्साहित करने के लिए कि आप के अंदर वो जज्बा बाकी है कि आप भी कुछ योगदान करें पृथ्वी के लिए। तो दोस्तों, आप क्या योगदान कर रहे हैं ओजोन परत को बचाने के लिए, हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, डेज ऑफ द डे की बात कर रहे हैं हम, और आज एक और डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर साउथ। इसमें दोस्तों, ये जो डे है, अगर इसे हिंदी में समझें तो ये दक्षिणी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस कहा जाता है, और ये दिवस हर साल 16 सितंबर यानी कि आज ही के दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 जनवरी सन 2024 को एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। पहली बार ये दिवस 16 सितंबर 2024 को मनाया गया था, और ये दिवस अमीर और विकासशील देशों के बीच तकनीकी अंतर को कम करने पर जोर देता है। साथ ही साथ ये जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के महत्व को भी बताता है, और इस दिवस पर आप ऐसा कर सकते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति। जिस बच्चे में साइंस के प्रति रुझान हो तो आप उसे प्रोत्साहित करें उनकी प्रति, और जिसमें ना भी हो तो उनके प्रति रुचि जगाने का प्रयास करें। उन्हें आप किताबें दे सकते हैं, किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, और जैसे बच्चे कुछ सवाल पूछें कि आकाश नीला क्यों होता है, तो उसे नज़रअंदाज ना करें, उसे बताएं, कैसे भी करके उसे बताएं, और साथ ही आसान तरीके से आप उन्हें साइंस से जुड़ने का प्रयास करवा सकते हैं। तो ये तो बात हुई डेज ऑफ द डे की, और ये प्यारा सा गीत आपके लिए।

दोस्ताना फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। दोस्तों, हमने सवाल पूछा था ओजोन परत को बचाने के लिए आप अपना क्या योगदान देते हैं। हमारे पास अनिल बेनीवाल जी का मैसेज आया है हिसार से। ये लिखते हैं, राम राम जी, पॉलिथीन का उपयोग कम करना पड़ेगा, ये लिख रहे हैं। और साथ ही हमारे पास आया है चरण दास राजू अग्रवाल लंगाड़ी से, ये मैसेज लिखते हैं। ये लिखते हैं, ओजोन दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा, बहुत गंभीर विषय है, बड़ी तकलीफ होती है। थोड़ी सी खुशी होते ही हर इंसान खतरनाक पटाखे जो बहुत ही ज्यादा प्रदूषण करते हैं उसे चलाते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात लिखी कि पटाखों का इस्तेमाल बहुत कम से कम करना चाहिए। नवाब अहमद भारती हैं बल्लीमारान से, ये लिखते हैं, आरजे अमित कमल जी, आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब है, ओजोन से बचाने के लिए हमने ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और आपके द्वारा दी गई जानकारी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आप जो गीत बजा रहे हैं वो भी उन्हें पसंद आ रहे हैं। धन्यवाद नवाब अहमद भारती जी। और सवाल एक बार फिर से आपको बता देते हैं, सवाल है, आज है ओजोन लेयर दिवस, और आप किस तरीके से योगदान देते हैं पृथ्वी को बचाने के लिए, ओजोन लेयर को बचाने के लिए। तो ये गीत आपके लिए।

छोटी सी बात फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। घर आंगन कार्यक्रम चल रहा है 100.1 मेगा हर्ट्ज पर एफएम गोल्ड पर, और हमने सवाल पूछा था ओजोन लेयर को बचाने के लिए आप अपना क्या योगदान देते हैं, और हमारे पास डॉक्टर राजेश्वर राव जो शकरपुर दिल्ली से लिख रहे हैं, रिड्यूस कार यूसेजेस बाय वॉकिंग बाइकिंग कार पुलिंग और यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा ये लिख रहे हैं। और दोस्तों डेज ऑफ द डी की बात कर रहे हैं, और कर्नाटक संगीत का वो दौर जब दूर दूर तक किसी महिला गायिका का नाम तक नहीं आता था, तब एक महिला एक ऐसा सितारा चमकी जिनका नाम था MS सुब्बलक्ष्मी, जिनका गायन के क्षेत्र में एक विशेष स्थान है। महात्मा गांधी जी का कहना था कि आधुनिक भारत की वो मीरा है। एक बार उन्होंने कहा था कि हरि तुम हरो जन की भीड़, इस मीरा भजन को श्रीमती सुब्बलक्ष्मी बोल भी दें तो वो भजन किसी और के गाने से ज्यादा सुरीला हो जाएगा। वो ऐसी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। आज डॉक्टर MS सुब्बलक्ष्मी की जयंती है। सुब्बलक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर सन 1916 को तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने संगीत की शिक्षा पूरी कर ली थी। 10 साल की उम्र तक पहुंचते हुए उनका पहला डिस्क रिकॉर्ड भी कर लिया था, और 17 साल की उम्र में उन्होंने पहला संगीत भी पेश किया था। सुब्बलक्ष्मी ने कई भाषाओं में गीत रिकॉर्ड किए, इनमें मलयालम पंजाबी भी शामिल है। इन्होंने पंडित नारायण व्यास के अलावा आर्य कुडी, श्रीनिवास अय्यर तथा और रामानुज अयंगर से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा था। सुब्बलक्ष्मी महान गायिका हैं और उनकी हम उनकी स्मृति को नमन करते हैं।

आपने सुना फिल्म बातों बातों में से। घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और दोस्तों हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जो हमने आपसे सवाल पूछा। हमारे पास अरहान अहमद का वजीराबाद से मैसेज आया है। ये लिख रहे हैं अमित कमल जी, आपके द्वारा पेश किया जा रहा प्रोग्राम घर आंगन हमें बहुत कुछ सिखाता है। आपकी जानकारी हमें बहुत कुछ बताती है, जो हमें नहीं मालूम होता वो भी हमें जानने का मौका मिलता है। धन्यवाद। और ये सब आपका प्यार है श्रोताओं, और हमारी जो पूरी टीम है इसी प्रयास में रहती है कि आप तक नई नई जानकारियां पहुंचाई जाए। और ये जानकारी सिर्फ हमारी नहीं होती, हमारी पूरी टीम इसमें मेहनत करती है, तो ये श्रेय उनको भी जाता है। और दोस्तों हम डीज ऑफ द डीज की बात कर चुके हैं, और अब महिलाओं की बात कर लेते हैं। हर महिला के वार्डरोब में ऐसी कुछ साड़ियां जरूर होती हैं जिन्हें पहनने का कभी नंबर नहीं आता। सालों रखे रखे ये साड़ियां अलमारी के किसी कोने पड़ी रह जाती हैं। अब इन्हें फेंकने का मन तो नहीं करता दोस्तों, और ओल्ड फैशन होने की वजह से कोई पहनना भी पसंद नहीं करता। ऐसे में सवाल आता है कि क्या इनका क्या किया जाए। तो क्यों ना थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाकर आप एक काम की चीज तैयार कर सकती हैं। जी हाँ, अपनी पुरानी साड़ी से आप सुंदर सी बेडशीट बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसके लिए दो अलग अलग रंगों की साड़ियों को जोड़कर एक बेडशीट बनाई जा सकती है, या फिर कई साड़ियों को काटकर और आपस में जोड़कर पैच वर्क वाली कलरफुल बेडशीट भी बनाई जा सकती है। और साथ ही साथ पुरानी साड़ियों से आप कुशन कवर भी बना सकते हैं, और इसे आपको कैसे तैयार करना है वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। खासकर सिल्क की साड़ियों से आप कुशन कवर काफी सुंदर लगते हैं, इन्हें आप फेस्टिवल पर यूज कर सकती हैं। थोड़ा और क्रिएटिव करने के लिए आप इसमें लेस लगवा सकती हैं और सुंदर लुक इससे आएगा। इसके साथ ही आप पुरानी साड़ियों से अपना सुंदर सुंदर फोटो फ्रेम भी बना सकती हैं। खासकर बनारसी साड़ियों और हैवी साड़ियों से डेकोरेटिव फ्रेम बनाकर तैयार किए जा सकते हैं। बस उस हिस्से को अलग से काट लें और किसी फ्रेम में लगाकर रूम में डेकोरेट कर लें। ये क्रिएटिव हैक फेस्टिवल सीजन में काफी काम आता है। और हल्के फैब्रिक वाली साड़ियों को दोस्तों आप पर्दे बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रंग बिरंगे पर्दे घर में एक अलग ही वाइब ऐड करते हैं, खासतौर से लाइट कलर्स और फ्लोरल प्रिंट्स काफी अच्छे लगते हैं। थोड़ी और क्रिएटिविटी दिखाकर आप इसमें लेस भी लगा सकती हैं, गोटा लगा सकती हैं, और पुरानी साड़ियों से आप खूबसूरत सा टेबल रनर भी बना सकती हैं। इसके लिए आप साड़ी का वो वाला हिस्सा चुनें जिस पर सुंदर प्रिंट वाली या बॉर्डर वाली साड़ियां हों, तो आप इस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। और पुरानी साड़ियों का इस्तेमाल भी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप ना पुरानी साड़ियों को रखे रहेंगे तो वो थोड़ा सा अगर पहनेंगे भी तो वो उतना लुक नहीं देती हैं। तो आपको क्या करना है, जो हमने आपको तरीका बताया है उसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। हमारे पास एक और मैसेज आया है योगराज जी का, ये लिखते हैं, नमस्ते, मैं दिल्ली बुराड़ी से लिख रहा हूँ, अमृत विहार से। और ओजोन परत को बचाने के लिए आपने जो सवाल पूछा, मेरा मानना है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और हमारे आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखते हैं पेड़। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और आप सभी के लिए ये प्यारा सा गीत।

रूना लैला और भूपेंद्र की आवाज में ये गीत आप सुन रहे हैं घर आंगन कार्यक्रम में, और स्टूडियो की जो घड़ी है हमें इशारा कर रही है आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारा मेल आईडी है वही fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके प्यारे प्यारे संदेशों का इंतजार। इसी के साथ अपनी दोस्त अमित कमल को यहीं पर दीजिए इजाजत, अगली मुलाकात तक नमस्कार।

0: घर आंगन।
1: आपके अस्तित्व
0: घर आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के पांचवें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। तीन दिन का यह सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। यह सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन शामिल होगा। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना

0: प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सेमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर उच्च स्तरीय मुख्य भाषण, पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 प्रति लेनदेन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत स्वच्छता के लिए चिन्हित स्थलों और अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट टू वेल्थ पहल के जरिए स्वच्छता से समृद्धि को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के उत्पादों के लिए 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं का बाजार खोलेगा और देश में रोजगार तथा आय बढ़ाने में मदद करेगा। ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में 3री बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का अंतिम मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साथिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने वाली एक ढाल है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 361 अंक बढ़कर 74,364 पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Lalema Aneja Dang. Government has clarified that there will be no charges at all for person-to-person, that is P2P, UPI transactions, irrespective of the amount transferred. Finance Ministry said that payments to merchants up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the zero merchant discount rate MDR framework for small merchants, will also remain free. The Ministry said that consequently, approximately 96% of all person-to-merchant transactions will remain unaffected. It said that merchant discount rate MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. New Zealand's Parliament has passed legislation to implement its

अस्पताल। आज बात करेंगे कलम के धनी एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने छोटी उम्र में बड़े मकाम हासिल किए। दो बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में प्रसार भारती के अध्यक्ष पद्मश्री प्रसून जोशी पर केंद्रित है हमारा आज का कलाकार बेमिसाल, जिसे लेकर आपके साथ है रजनी। शुरुआत करते हैं उनके लिखे गीत के साथ, फिल्म फना से। आवाज है शान और कैलाश खेर की।

16 सितंबर 1971 को अल्मोड़ा में जन्मे प्रसून जोशी के पिता डीके जोशी स्टेट एजुकेशन सर्विस में एडिशनल डायरेक्टर थे। उनकी माता सुषमा जोशी पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर थी और उन्होंने 3 दशक तक ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया। उनके माता पिता दोनों शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित थे, इसलिए प्रसून जोशी के दैनिक जीवन में शैक्षणिक अनुशासन, कलात्मक जीवन की एक समृद्ध धारा और संगीत और संस्कृति की मजबूत भावना थी। उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में उनका बचपन बीता, जहां उन्हें वास्तविक भारतीय संस्कृति की एक अद्भुत समझ मिली, जो कि उनकी रचनाओं में भी दिखाई देती है। उन्हीं का लिखा गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म रंग दे बसंती से। आवाजें हैं उदित नारायण और साथ में है भूपेंद्र सिंह।

प्रसून जोशी सिर्फ 17 बरस के थे जब उनकी पहली पुस्तक मैं और वो प्रकाशित हुई। इसके बाद उनकी किताबें दर्द सो रहा है और समाधान ने उन्हें लेखक के रूप में स्थापित कर दिया। इनके अलावा सनशाइन लेंस और थिंकिंग अलाउड भी उनकी चर्चित पुस्तकें हैं। उनकी रुचियों और कार्यों का दायरा बहुत बड़ा है। फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर एमबीए करने के बाद उन्होंने एक प्रतिष्ठित एडवर्टाइजिंग कंपनी ज्वाइन की और सिर्फ 10 बरस में इसके एग्जीक्यूटिव क्रिएटिव डायरेक्टर के पद तक पहुंच गए। इसके बाद एक इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और एशिया पैसिफिक के क्रिएटिव डायरेक्टर के पद तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई बेहद लोकप्रिय एडवर्टाइजिंग कैंपेन का निर्माण किया। उनके बनाए एक विज्ञापन को गन रिपोर्ट पोल द्वारा 21वीं सदी के 20 सर्वश्रेष्ठ विज्ञापनों में शामिल किया गया। इसके साथ ही कई सामाजिक अभियानों में भी प्रसून जोशी ने योगदान दिया, जैसे स्वच्छ भारत, शिक्षा, पोलियो उन्मूलन, कुपोषण, महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार और संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी लक्ष्य अभियान। फिलहाल अगला गीत आपको सुनवाते हैं गजनी फिल्म से। आवाजें हैं बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की।

आज का कलाकार बेमिसाल आधारित है जाने माने गीतकार सीबीएफसी के पूर्व अध्यक्ष और प्रसार भारती के अध्यक्ष पद्मश्री प्रसून जोशी पर। अभी जो गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, ये गीत था फिल्म लज्जा से, और यही वो फिल्म थी जिससे कि गीतकार के तौर पर प्रसून जोशी ने अपनी शुरुआत की। इसके बाद हम तुम, फना, रंग दे बसंती, ब्लैक, तारे जमी पर, दिल्ली छे, नीरजा, गजनी, सत्याग्रह और मणिकर्णिका जैसी फिल्मों में उन्होंने गीत लेखन किया। रंग दे बसंती के डायलॉग और भाग मिल्खा भाग की पटकथा भी जोशी जी ने लिखी। फिल्म तारे जमी पर और चिटगोंग के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम तुम, रंग दे बसंती, फना, तारे जमी पर, चिटगोंग और भाग मिल्खा भाग के लिए उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड और प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड भी जीते। अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म तारे जमी पर से, आवाज है शान और आमिर खान की।

गुलाब के सावन ऐसे बरसे और सिल्क रूट का डूबा डूबा रहता हूँ बेहद पॉपुलर हुए। सीबीएफसी के अध्यक्ष के रूप में इसके कार्यप्रणाली के डिजिटलीकरण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और 2026 में प्रसार भारती के अध्यक्ष का पदभार संभाला। भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद प्रसून जोशी आमिर खान के साथ मिलकर कुपोषण पर 50 लघु फिल्मों के निर्माण की तैयारी कर रहे हैं। अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हम तुमसे, आवाजें हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की।

मिरी में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज तथा 104 मेगाहर्ट्ज एफएम पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 सितंबर महीने की 16 तारीख दिन है बुधवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्रीमती सांगे चोमू, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री थामत्रिंग और श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री हेमंता स्वर्गिरी, मोनपा में उद्घोषक हैं श्री तुप्तन टाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज का हिंदी उद्घोषक थाम टाशी। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी एवं हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: targeting Mecca. The incident is reported amid a sharp escalation between Saudi Arabia and the Houthis. Yesterday, civil defense of Saudi Arabia also issued alerts and then lifted them in six cities, including Yanbu, its main Red Sea oil port. Well, World Ozone Day is being observed across the globe today. The day is dedicated to raising awareness about the crucial role of the ozone layer in safeguarding life on Earth. The theme of 2026 is Global Action for a Cooler Planet. Union Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Kirti Vardhan Singh, today said that India has demonstrated that sustainable economic growth is possible while protecting the environment. He was addressing a program in Mumbai to mark the 32nd World Ozone Day. Mr. Singh said, India has exceeded its targets under the Montreal Protocol without compromising on development. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Haryana, Chandigarh, Punjab for today. Similar weather conditions are also expected to prevail over Kerala, Mahe, Punjab, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for the day. For Delhi, the weather agency has forecast a spell of light rainfall during the evening today. The Met Department said that thunderstorms and lightning conditions are expected over Bihar, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Odisha and Rajasthan for the next 2 to 3 days. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the second T20 international at the Arun Jaitley Stadium in Delhi last night to take an unassailable 2-0 lead in the 3-match series. Chasing a target of 160 runs, India comfortably reached 163 for 3 in 14.5 overs. Sanju Samson top scored with a blistering 57 off 22 balls, while Abhishek Sharma contributed 39 runs off 19 balls. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 297 points to 74,301, while Nifty added 106 points to 23,225 when reports last came in. And before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for mature tax policy debate, keeping national interest first. India lodges strong protest with Pakistan over unacceptable conduct of Pakistani naval units leading to naval collision in international waters. India Electric Mobility Index 2025 announced by Niti Aayog, Delhi emerges top performer in adopting electric mobility, followed by Maharashtra and Karnataka. Saudi Arabia says it intercepted Houthi drone near Mecca. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान. भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया. नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन. सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया. हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी. हौसी ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया. और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान. अब समाचार विस्तार से. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देशहित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए. वित्त मंत्री आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित 2 दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी. श्रीमती सीतारामन ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध को बढ़ावा देने का आग्रह किया.
2: The question should not only be.
3: सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि इस साल के बजट में हमारे क्षेत्र को क्या मिलेगा. बड़ा सवाल यह है कि अगले 2 दशकों में भारत की टैक्स व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है. इसके लिए टैक्स नीतियों पर बेहतर और व्यापक शोध की जरूरत है. साथ ही जहां भी संभव हो

0: ऐसी नीतियों के व्यावहारिक विकल्प सामने आने चाहिए जिन्हें वास्तव में लागू किया जा सके। विदेश मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी राजनयिक को तलब कर समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की एक पाकिस्तानी नौसैनिक इकाई से टक्कर हुई। घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही की अग्रिम सूचना संबंधी समझौते का सीधा उल्लंघन है। मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को ये बताने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए। मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। जनरल सेठ रूस के थलसेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्दोवीचेव के साथ पेशेवर सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे मॉस्को में राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉ जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परम्परा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया, जिसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और क्रियान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। श्री गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% विद्युत वाहन होंगे। उन्होंने बताया कि 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम स्कोर 84 रहा, जो 2024 में 77 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन भी शामिल है। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए साझेदारी, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग को तलाशने तथा विश्वसनीय वैश्विक सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपये तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रूपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR

0: का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कोलकाता में करोड़ों रुपए के चिटफंड मामले में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। ईडी की एक टीम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ उत्तर कोलकाता के नारकेल डांगा इलाके में एक कारोबारी के घर पहुंची। सूत्रों के अनुसार कारोबारी ने आकर्षक रिटर्न का वादा कर लोगों से धनराशि जुटाई और इसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया। इसी मामले में उत्तर और दक्षिण कोलकाता के 5 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है।

0: ईडी की एक टीम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ उत्तर कोलकाता के नारकेल डांगा इलाके में एक कारोबारी के घर पहुंची। सूत्रों के अनुसार कारोबारी ने आकर्षक रिटर्न का वादा कर लोगों से धनराशि जुटाई और इसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया। इसी मामले में उत्तर और दक्षिण कोलकाता के 5 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देशभर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी दल के साथ हैं।
2: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। केंद्रीय टीम ने पटना जिले के मनेर और दानापुर के दियारा क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहे इस दौरे के दौरान श्री चौहान राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली में शाम को हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिजली चमकने के साथ तूफान की आशंका है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने पर्यावरण की रक्षा के साथ टिकाऊ आर्थिक विकास का उदाहरण पेश किया। मुंबई में 32वें विश्व ओजोन दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत तय लक्ष्यों को विकास से समझौता किए बिना हासिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के F-15 जेट को मार गिराया है। हौसी का यह भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब ने उनके विभिन्न जिलों पर 450 से ज्यादा हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
4: हौसी सेना के प्रवक्ता यहया सरी ने बताया है कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सऊदी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। हालांकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इन हमलों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। इससे पहले आज सुबह इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का में सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने संभावित हवाई हमले की चेतावनी जारी की है। हौसियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स

0: 297 अंक बढ़कर 74,301 पर रहा। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती है।
1: कर्नाटक संगीत की रानी कहे जाने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की सबसे सम्मानित शास्त्रीय गायिकाओं में से एक थी। 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मदुरै में जन्मी सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार बनी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी पहली रिकॉर्डिंग 10 साल की उम्र में की थी। कुंभकोणम में महामहम उत्सव में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी जब वे महज 16 साल की थी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने कई भाषाओं में प्रदर्शन किया जिनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ शामिल है।

0: सुब्बू लक्ष्मी ने अभिनय के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत वर्ष 1938 में फिल्म सेवा सदन से की। फिल्म मीरा में उनके अभिनय को भी काफी सराहा गया।
1: परमेश्वर के सामने राजा क्या, स्वामी क्या, गुलाम क्या, गौवें चराने वाले ग्वाल बालों के साथ मायावी कृष्ण को नाच गाना नहीं भाया, दुर्योधन के आलीशान महल को तज कर दीन विदुर की कुटिया को भगवान ने क्या नहीं अपनाया।
0: पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: इस अवसर पर देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी उनके योगदान का स्मरण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया, हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे नरेंद्र चंचल के आवाज में चंद शिव भक्ति भजन। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

शुदा व्यापानम दे रहे हैं कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत नरेंद्र चंचल और साथियों से चंद शिव भक्ति भजन का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से जारी है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे नरेंद्र चंचल और साथियों से चंद शिव भक्ति भजन। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे जुबिन गर्ग, अंगराग महांता और मधुस्मिता के आवाजों में चंद आधुनिक आसामी नगमे। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत जुबिन गर्ग, अंगारक महंता और मधुस्मिता के आवाजों में चंद आधुनिक आसामिया नगमे आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। जारी है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: जुबिन गर्ग का अंगरख महानता और मधुस्मिता की इन्हीं आधुनिक आसामिया नगमों के साथ ही अलग अलग प्रांतों की गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन तवांग की सदस्य एडवोकेट सोनाम जांगमू जी से प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर एक जागरूकता संदेश।
1: नमस्कार सभी को, मैं एडवोकेट सोनम जांगमू, मेंबर WWA तवांग। आज मेरी बात कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग सभी को एक संदेश देना चाहूंगी। जैसे कि आप लोग सभी को पता है कि WWA पिछले 3 वर्षों से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर में काम कर रहे हैं, तो आप लोग सबसे ये निवेदन है कि आपके घर में जितने भी ड्राई और क्लीन प्लास्टिक है वो आप हमारे ऑफिस में आके दे सकते हैं। हमारा ऑफिस जो है मोन्यूल विद्या निकेतन के बिल्कुल पास में है, तो आप लोग वहाँ आके अपना प्लास्टिक दे सकते हैं, क्योंकि हमारे तवांग को क्लीन और ग्रीन रखने में हम सबका योगदान होना बहुत जरूरी है। और मैं टैक्सी यूनियंस वालों को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी आप अपने टूरिस्ट को हमारे जो पहाड़ों में घुमाने ले जाते हैं, तो काइंडली आप अपने कार में एक डस्टबिन रखिए या फिर एक प्लास्टिक रखिए, जहाँ पर वो जो खाने का सामान लेके जाते हैं उनको वापस उस प्लास्टिक में डाल के लेके आए और वो हमारे ऑफिस में आके वो दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ों में कचरा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो पहाड़ों को साफ रखना हम सबका जिम्मेदारी है। और प्लास्टिक जो है एक ऐसा चीज है वो हजारों साल तक नहीं पिघलता है, तो इसको यूज करने के लिए हमें बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा तवांग जो है एक टूरिस्ट प्लेस है। बढ़ते टूरिस्ट के कारण प्लास्टिक का भी आना बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, तो इसको रोकना बहुत ही जरूरी है। आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, जो हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं वो बिल्कुल भी नॉन फंडेड है, मतलब किसी भी तरह का हमें फंड नहीं मिलता है। वो हम अपने ही कंसर्न से, मतलब हम एक कंसर्न सिटीजन होने की वजह से हम ये काम में लगे हुए हैं। और हमारा जो WWA तवांग है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो हमें प्लास्टिक डोनेट करते हैं उनको एनकरेज करने के लिए हम अपने पॉकेट से 10-10 रुपए का साबुन देते हैं। तो ये सबको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमारे तवांग को क्लीन और ग्रीन बनाएं। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे WWA तवांग ने अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 विलेज को एडॉप्ट किया है। एक है शोबस्ती, दूसरा है मंडलिंग, तीसरा है चंगबू, और इनके साथ साथ हमें ऑल बाजार और न्यू बाजार के भी कई सारे दुकानदारों ने अभी प्लास्टिक देना स्टार्ट कर दिया है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आगे आके अपना जो घर में जो प्लास्टिक यूज करते हैं उन्हें क्लीन और ड्राई रखें और हमें डोनेट कीजिए, हमें बहुत

0: भी होगा। हम वो प्लास्टिक को सेग्रीगेट करते हैं अपने ऑफिस में, और सेग्रीगेशन होने के बाद में आप लोग सभी को पता होगा नुमला में एक झमसे गसल करके एक स्कूल है, वहाँ जाके हम प्लास्टिक को डंप करते हैं। वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं प्लास्टिक को रीयूज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो आप लोग सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लास्टिक को आप जहाँ तहाँ नहीं फैलाएं, और जितना हो सके उसे ड्राई रखें, एटलीस्ट वेट नहीं होके हमें दे सकते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप कम से कम प्लास्टिक को यूज कीजिए, और अगर आप कहीं दुकानों में भी जाते हैं तो अपने अपने घर से कुछ बैग लेके जाइए, ताकि हम अपने घर में कम प्लास्टिक ला सके। और अगर आप प्लास्टिक यूज करते भी हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, आप काइंडली आपने वो जो प्लास्टिक है उसको जमा करके हमारे ऑफिस तक पहुंचा दीजिए। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारा जो WWA मेंबर्स है वो महीने में 2 बार प्लास्टिक कलेक्शन के लिए जाते हैं, 15 तारीख या फिर 30 तारीख, दोनों में आते हैं। तो आप लोग हमें भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपका प्लास्टिक कलेक्शन कहाँ से करना है, तो हम लोग खुद आके आपके घर से प्लास्टिक लेके जाएंगे। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन तवांग की सदस्य एडवोकेट सोनम जांगमू जी से प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर एक जागरूकता संदेश।
2: ये इयररिंग दिखाना
3: गया तेरा प्राइस मनी,
2: कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती,
4: आते समय कर लिया मोबाइल से,
2: कहाँ
4: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में।
2: हाँ,
4: RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना, रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पर गारंटीड रिटर्न्स,
2: नो ब्रोकरेज,
3: नो हिडन फीस।
2: मान गए, आपको नहीं आपको।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, समय दोपहर की 3:35 हुए हैं, और अब पेश है महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला नगमा सुनिए आई हेट लव स्टोरी फिल्म से श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा के आवाजों में। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, नारी संगीत कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए। ओम शांति ओम फिल्म से के आवाज में विशाल शेखर द्वारा संगीत इस गीत को लिखा है विशाल दत्तलानी ने।

0: ओम शांति ओम फिल्म के इस गीत नगमे के साथ ही महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत अब समाप्त होता है।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। श्रोताओं सुनिए फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी।

गीतमंजरी कार्यक्रम का पहला नगमा पेश है ब्रह्मास्त्र फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य तथा संगीत दिया है प्रीतम ने।

शेरशाह फिल्म से भी आप सुन रहे थे तनिष्क बख्शी का लिखा नगमा, स्वर जुबिन नौटियाल और अजीज कौर के तथा संगीतकार तनिष्क बख्शी। अगला नगमा पेश है अखिल सचदेव और मंशील गुजरल की आवाजों में। बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म के इस गीत को लिखा एवं संगीत से सवारा है अखिल सचदेव ने।

0: श्रेया घोषाल और सचिन जिगर के आवाजों में अभी आप सुन रहे थे जयंता बाई की लव स्टोरी फिल्म का नगमा, बोल प्रिया पांचाल के और संगीत सचिन जिगर का। श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत फिल्म जगत के चंद नव गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए कबीर सिंह फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में, बोल एवं संगीत मिथुन का।

बजरंगी भाईजान फिल्म से भी आप सुन रहे थे निलेश मिश्रा का लिखा नगमा, स्वर जुबिन नौटियाल के और संगीत प्रीतम का। अगला नगमा पेश है अरिजीत सिंह की आवाज में। बेरिया फिल्म की इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे तू झूठी में मक्कार फिल्म का नगमा, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के तथा संगीतकार प्रीतम। श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का अंतिम नगमा पेश है बागी 4 फिल्म से जॉश ब्रार और परंपरा टंडन की आवाजों में, बोल जगदीप वारिंग के और संगीत आगाज का।

0: बागी फोर फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी अब समाप्त होता है।
1: अरुणाचल प्रदेश के क्रिएटर्स सुनो, आपके होम टाउन की वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल है। पहाड़, कल्चर, खाना, ट्रेडिशंस और ढेर सारी स्टोरीज। अब टाइम है अपनी स्टोरी को इंडिया की स्टेज तक ले जाने का। जुड़िए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज से और बनाइए 1 से 3 मिनट की वीडियो जो बताए कि आपका जिला कितना यूनिक है। और हाँ, प्राइज भी जबरदस्त है। डिस्ट्रिक्ट विनर्स 50,000, स्टेट विनर्स 2 लाख रुपए और नेशनल विनर्स 5 लाख रुपए। बस वेव्स ओटीटी पे रजिस्टर करें, माई वेव्स पर जाकर क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और अपनी वीडियो सबमिट करें। अरुणाचल के क्रिएटर्स, कैमरा उठाओ और अपनी स्टोरी दिखाओ।
0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय 4:30 हुए हैं। चलिए अब आनंद लेते हैं शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत उस्ताद अली अकबर खान से सरोद वादन। राग है मधुमंद सारंग।

श्रोताओं भी अब सुन रहे थे मधुमन सारंग राग पर उस्ताद अली अकबर खान से सरोद वादन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। श्रोताओं अब से चंद पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

यह आकाशवाणी है, अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष काजू न्यूगियो ने अन्य सांसदों के साथ दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने ईटानगर स्थित लोक भवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत डिक्लेमेशन और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग पुलिस द्वारा प्रोजेक्ट मुस्कान के तहत चलाए जा रहे निरंतर बाल सुरक्षा जागरूकता अभियानों में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में 15 दिवसीय हिंदी पखवाड़ा समारोह का शुभारंभ हुआ। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही जानवारी ताली एक ही पर्वतारोहण सत्र में माउंट कून और माउंट नून दोनों ही चोटियों में सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल रात दिल्ली में खेले गए दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा कर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देश हित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रीय पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित 2 दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी। वित्त मंत्री ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध करने को और बढ़ावा देने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी राजनीक को तलब कर समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। मंत्रालय ने कहा है कि इससे भारतीय नौसेना की एक पाकिस्तानी नौसैनिक इकाई से टक्कर हुई। घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मंत्रालय ने कहा है कि अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही की अग्रिम सूचना संबंधित समझौते को सीधा उल्लंघन करती है। मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को यह बताने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए। मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के

0: शुभभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का यह सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। यह सहयोग को बढ़ावा देने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। एक रिपोर्ट।
1: सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन भी शामिल है। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए साझेदारी, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग को तलाशने तथा विश्वसनीय वैश्विक सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
0: अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कालो निग्योर ने अन्य सांसदों के साथ दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। सम्मेलन में 56 राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन सह निर्वाचन का भी आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में विभिन्न संसदीय और लोकतांत्रिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन का समापन 19 सितम्बर 2026 को निर्धारित है। राज्य में बढ़ते नशीले पदार्थों के सेवन के खतरे के खिलाफ अपने निरंतर अभियान के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने ईटानगर स्थित लोक भवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत डिक्लेमेशन और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनने के लिए प्रेरित करना है। राज्यपाल ने प्रतिभागियों से बातचीत कर उनके आत्मविश्वास, विचारों की स्पष्टता तथा समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस उद्देश्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिला पुलिस द्वारा प्रोजेक्ट मुस्कान के तहत चलाए जा रहे निरंतर बाल सुरक्षा जागरूकता अभियानों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक मामला दर्शाता है कि स्कूलों में बच्चों को दी गई जागरूकता उन्हें दुर्व्यवहार की स्थिति में मदद मांगने के लिए सशक्त बना सकती है। मौजूदा मामले में आरोप है कि एक पड़ोसी ने मिठाई देने के बहाने पीड़ित बच्ची को बहला फुसला कर उसके साथ कथित अपराध किया। पीड़ित बच्ची के चचेरे भाई, जो स्वयं भी स्कूल में ही पढ़ता है, उसने बाद में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 यानी 1098 के माध्यम से मदद मांगी। इसके बाद पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई की। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चाइल्ड लाइन से संदेश प्राप्त होने पर महिला पुलिस की टीम लेड इंस्पेक्टर आमुम पान्यांग के नेतृत्व में तत्काल कार्रवाई में जुटकर 1 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। इस बीच ईस्ट सियांग पुलिस ने अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय से सतर्क रहने, बच्चों की बात बिना टोके सुनने तथा जब भी कोई बच्चा परेशानी में दिखाई दे तो तुरंत उचित सहायता लेने की अपील की। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में 15 दिवसीय हिंदी पखवाड़ा समारोह का शुभारंभ हुआ। समारोह में हिंदी को संचार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और राष्ट्रीय एकीकरण की भाषा के रूप में और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम हिंदी विभाग JNC पासीघाट द्वारा भारतीय भाषा मंच ईस्ट सियांग इकाई के सहयोग से आयोजित की जा रही है। विद्यार्थियों में हिंदी भाषा को एवं साहित्य के प्रति अधिक रुचि विकसित करने के उद्देश्य से पखवाड़े के दौरान कविता पाठ, निबंध लेखन और पोस्टर निर्माण प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न साहित्यिक और रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही जानवारी ताली एक ही पर्वतारोहण सत्र में 7,077 मीटर ऊंची माउंट कुन और 7,135 मीटर ऊंची माउंट नूंड दोनों ही चोटियों को सफलतापूर्वक फतह करने वाले पहली भारतीय महिला बन गई है। जानवारी ताली ने गत 8 सितंबर को लद्दाख में माउंट नूंड पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी और इससे पहले उन्होंने 27 जुलाई को माउंट कुन पर चढ़ाई पूरी की थी। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को ₹2,000 तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI शुल्क केवल ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर

0: लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेनदेन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से 0 MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेनदेन पर कोई मासिक सीमा, लेनदेन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान।
1: मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। केरलम, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 8 जिलों वेस्ट कामेंग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, शियोमी, दिवांग वैली, लोअर दिवांग वैली, ईस्ट सियांग और अंजाव के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने इस अवसर पर कहा है कि भारत ने पर्यावरण की रक्षा के साथ टिकाऊ आर्थिक विकास का उदाहरण पेश किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashwani, the news read by Morgan Bagra. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has stressed that tax-related proposals to the government must keep the nation first over and above seeking rate reduction, exemption or concessions. She was speaking at the inaugural two-day conference on New Age Taxation organized by the International Tax Research and Analysis Foundation in Bengaluru today. The minister called upon the academics, researchers and think tanks to make independent tax policy research a regular part of public discourse that can be examined, challenged and improved. New Zealand's parliament has passed legislation to implement its free trade agreement with India, paving the way for significant reductions in tariffs and expanded trade between the two countries. New Zealand Trade Minister Todd McClay said the agreement would deliver immediate and substantial benefits for exporters. He said the high-quality trade deal is expected to enter into force later this year. Under the agreement, tariffs on about 95% of New Zealand's exports to India will be eliminated or significantly reduced. All Indian goods will receive duty-free access to New Zealand's market. Wellington has also agreed to invest $20 billion in India over the next 15 years. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the fifth edition of Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi tomorrow. The three-day conference will serve as a flagship platform, bringing together the global semiconductor and electronics ecosystem to foster collaboration, drive innovation, strengthen manufacturing capabilities, attract investment, and develop future-ready talent. The event will bring together over 600 exhibitors, 300 international companies, and delegations from more than 50 countries. The exhibition will feature 6 country pavilions representing Japan, South Korea, Malaysia, Netherlands, Singapore, and Sweden, 12 state government pavilions, and a dedicated startup pavilion. Semicon India is India's premier semiconductor conference and exhibition, jointly organized by the India Semiconductor Mission, the Ministry of Electronics and Information Technology, and SEMI. External Affairs Minister today summoned the charge the affairs of the High Commission of Pakistan in New Delhi and lodged a strong protest over the unacceptable conduct of Pakistani naval units at sea, which led to a collision with a unit of the Indian Navy. In a statement, the ministry said, "While the incident which took place in international waters did not cause any major damage, the conduct was in direct contravention of the agreement between India and Pakistan on advance notice on military exercise, maneuvers and troops movements of April 1991. The ministry asked the charge the affairs of Pakistan to convey to the concerned Pakistani authorities the need for all military units to observe due care and respect the provisions of the relevant agreements between the two sides in order to prevent any

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आज आप सुनेंगे हमारे केंद्र के आज के शेष एवं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो चलिए श्रोताओं, पहले आपको आज के शेष कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या के 6:20 पर कार्यक्रम शेदोन लेरिम में सुनिए ग्यांगोंग मठ के आनी यीशी पेमा और साथियों से बौद्ध भक्ति भजन। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार शाम 7:00 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर सुनिए हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमी तराने में सुनिए लता मंगेशकर से एक देशभक्ति गीत। व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत रात्रि 8:00। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 17 सितंबर 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाने की तरह कल दोपहर 2:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार 2:15 पर। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए नरेंद्र चंचल और साथियों से चंद शिव भक्ति भजन कल दोपहर 2:30 पर। चंद आधुनिक बंगाली नगमों का आनंद लीजिए कुमार सानू के आवाज में कल दोपहर 3:00 कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम महिला मंच कल दोपहर 3:30 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी में आनंद लीजिए रॉय फिल्म से अरिजीत सिंह और अदिति सिंह शर्मा, कपूर एंड सन्स फिल्म से अरिजीत सिंह और अजीज कौर, तमाशा फिल्म से मोहित चौहान, सनम रे फिल्म से अरमान मलिक, पलक मुंचल और अमाल मलिक, हॉलीडे फिल्म से अरिजीत सिंह, क्वीन फिल्म से अमित त्रिवेदी और अरिजीत सिंह, अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से अतीफ असलम, नोटबुक फिल्म से विशाल मिश्रा, जुग जुग जियो फिल्म से कनिष्क सेठ और कविता सेठ और बूथ वन फिल्म से अखिल सचदेव और मनशील गुजरल के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे कल दोपहर 3:50 पर। शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग में सुनिए पंडित हरि प्रसाद चौरासिया से बांसुरी वादन कल शाम 4:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 4:45 पर तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। रोजाने की तरह मोनपा कार्यक्रम नमथर लेरी में सुनिए लामा केसांग नोरबूजी से फामे ड्रिनलन सकपे उपन्यास का चौथा भाग कल शाम 5:00। 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में। कल शाम 5:35 पर सुनिए साप्ताहिक मोनपा कार्यक्रम देंगदुक समा लेरिम सेडा शाम 6:00। 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा।

बोध भक्ति वंदना का कार्यक्रम यदुन देर में सुनिए गेलोंग जंपा वांगचू और साथियों से बोध भक्ति भजन कल शाम 6:20 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता में सुनिए एलडी स्कॉलर्स होम विद्यालय तवांग के 5वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी टुंडुप वांगमो दोमगे से एक अंग्रेजी कविता। फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक में आनंद लीजिए। द ट्रेन एंड इंस्पिरेशन फिल्म से केके और जुबिन गर, क्रिश 3 फिल्म से अलीशा चिनाई और जुबिन गर, राज 3 फिल्म से जुबिन गर और श्रेया घोषाल, नमस्ते लंदन फिल्म से अलीशा चिन्नाई, हिमेश रेशमिया और जुबिन गर, आईसीयू फिल्म से जुबिन गर, विशाल ददलानी और शेखर रवजियानी, बस एक पल फिल्म से केके और जुबिन गर और बिग ब्रदर फिल्म से उस्ताद सुल्तान खान और जुबिन गर के आवाजों में गायक जुबिन गर द्वारा अन्य गायकों के साथ गाए चंद हिंदी फिल्मी नगमे कल शाम 7:11 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम में सुनिए फना फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। व्हाट्सएप पर मायशो पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत रात्रि 8:00। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसके साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मोनपा में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र आरसीएमसी या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते चैनलों के माध्यम से निर्यात को सुगम बनाना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपनी 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
2: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्फू में भूटान के विदेश मंत्री लिन्यो डी एन थुंगेल से मुलाकात की और व्यापक सहयोग की समीक्षा की। इस दौरान विकास, साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में भारत भूटान के बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक में उपराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, आप सुनिए हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। इस कार्यक्रम को संचालित एवं प्रस्तुत करता है दोर्जी ड्रेमा।

0: दोस्तों, अच्छा समय और बुरा समय दोनों का अलग अलग महत्व है। अच्छा समय लोगों को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है और बुरा वक्त आपको बताएगा कि लोगों की वास्तविकता क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके रेडियो दोस्त हिंदोजी जुर्मा। तकनीकी सहयोगी हेमंता स्वर्ग्यारे और तानिंग तको के साथ हम लेकर आए हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम देखते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में पहला फोन हमें किस श्रोता से प्राप्त हुए हैं। हेलो, नमस्कार।
1: हेलो जी, नमस्ते
0: जी। नमस्कार,
1: मैं रमेश पात्र।
0: अच्छा अच्छा, रमेश जी, आपका एक बार फिर हमारे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में स्वागत है। और बताइए, आप कैसे हो?
1: मैं तो अच्छा हूँ, आप?
0: जी, हम सभी लोग अच्छे हैं। बताइए, आज मैं आपके लिए कौन सी गीत पेश कर सकती हूँ?
1: मैं आज सुनना चाहूँगा दिल का क्या कसूर, मूवी का नाम है
0: जी।
1: और गाने के बोले, मिलने की तुम कोशिश करना,
0: वादा कभी न करना, है ना? जरूर पेश करेंगे।
1: तो गाना बहुत डेडिकेशन रहेगा, तो अमल बसुमतारी, भाईकन मुंडा, विमल बसुमतारी, दोनों पात्र, लाखी भूगेंद्र रंगी, देवाशीष हजारिका, और आपको भी गाना देने के चाहेगा
0: जी। तो रमेश जी, यहाँ पर इस वक्त बहुत सारे लोग कॉल पे जुड़े हुए हैं, तो मैं आपकी फरमाइश पेश कर रही हूँ और हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद आपको भी
0: जी।

0: हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो नमस्कार
0: जी। नमस्कार, अमाल जी बात कर रहे हैं?
1: जी जी जी, मैं असम से अमल बात कर रहा हूँ।
0: हाँ जी हाँ जी, और बताइए।
1: बताइए
0: जी, हम सब अच्छे हैं और आप लोगों के कॉल के इंतजार में हूँ। और बताइए, आज आपकी क्या फरमाइश है?
1: आज मैं एक गाना सुनना है, जंगली लव फिल्म का गाना सुनना दीजिए। हम छोटे अनजाने हैं रटा पर्पल की आवाज में।
0: जी, और कोई है आपके साथ इस गीत को सुनने के लिए आज?
1: मेरे साथ है बिमल बसुमतारी, भाई कौन मुंड्रा, रमेश पत्रो, लक्की पत्रो, देवाशीष हजूरिका, सुनीता बसुमतारी, गागेरा भा, संजय मुंडा और नीलोत्पल द्वारा, सरोज द्वारा और कंचन हजम और बरोका पालिका, इन सब के साथ सुनना है।
0: जी, और
1: डेडिकेट रहेगा मैं।
0: अच्छा अच्छा, तो अमल जी, इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग कॉल पे जुड़े हुए हैं, तो मैं, अगर आप बुरा ना मानो, तो उनके कॉल लेना चाहूंगी। तो मैं आपकी फरमाइश इसी के साथ पेश कर रही हूँ, और हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: हॅलो जी, नमस्कार.
1: हॅलो, ऑक्सिजन बोला मॅडम.
0: हॅलो, आकाशवाणी ना
1: शिरोला मॅडम.
0: लस ला रिंजिन खांडूला नंग से याला दिस समझी पुई गोनी ला
1: तम्मा शोम चम्मे सुमु नेरो दिखेत ना गेटो
0: चम्मे सुमु सिंगरो गता तांग पोख समय अरे ला
1: ओ ओ इला
0: लस ला चेक समय संगे नुई ना ला देश इना दमा
1: ताइम ओक किना मेन पलांग ये दिन उता से फोन ना मारा बंदे सुमु ने ये देखे निकेट में ही चामी तम
0: ओ लस लस लस ताते इना पुना से उच लेरम सेंटिन ने ना एजे इना शेल सेंटिन नेक मेला इना शे उत्यो जे इना को थुकते ना वो समझ पुनी क्रियो ला
1: ओके दिस या मेटम आवश्य दिदे हमन
0: ला लस लस लस
1: ओ तो
0: लेसला

0: हेलो नमस्कार।
1: हेलो टेस्टले मैडम
0: टेस्ट बेले ला पिमले टला
1: तमरी जुरु फोन दु फुले मैडम
0: लेसला समझी फुई गनी ला
1: तमा हिंदी समरी चेतर
0: हिंदी सम गोटन फुई निक्री मकनी ला
1: दुई समा सायु नारा
0: सायोनारा लव इन टोकियो का करेला नंगो पुना बनंग छन देश सुनीला
1: यो सा लव जों देश सुनतो सा खुशी अंग रो मेरम इंदिन बेमा इदि रो छम पासंग लाम हम इंदिन बेमा जांगा मेरम साइलाम इदि मेन दिन दो जी पुना गाव तिरु पुना कर्म तिरु तो अच्छे दिन दावा अदलो देश अक्टोबर अच्छे जांग तिरु चिजें बाप शांत रिजगन अब जांग देश हम दो जिलाम
0: Less.

0: हेलो नमस्कार.
1: हेलो आकाशवाणी न.
0: हेलो आकाशवाणी ला
1: म बसम दिसी नि निक्ष मुनो
0: लेस ला इन संग छिर ला नंग दोरे ला
1: ओ
0: लेस मुन पसम गोतिन दि फुगो नि ला
1: ए नि दे फोन नि खनि ते ते तम दिते आसम नि
0: ओ लेस लेस ए नि फरंग नि ओजि दिता आसम नि यो वाला
1: ओ लेस
0: ओ लेस लेस लेस
2: ए फरम उसम थप बक्सर तेरा थप्ते मनोरा

जी हाँ, तो दोस्तों ये था हमारा आज का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। अगर आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हर बुधवार की सुबह 10 बजे हमें जरूर फोन कीजिएगा। हमारा फोन नंबर है 6033914908। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ ही अब आपके रेडियो दोस्त दुष्जुम्मा को तकनीकी सहयोगी हेमंता स्वर्गियारी और तानिंग तको के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। इस कार्यक्रम को संचालित एवं प्रस्तुत करता थे दोर्जी ड्रामा। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। देशभर में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से शुरू किया जाएगा। यह अभियान 17 अक्टूबर तक जारी रहेगी। अभियान के प्रमुख क्षेत्रों में स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों और अधिक भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों का कायाकल्प, स्वच्छता कार्यों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना तथा सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट टू वेल्थ पहल के माध्यम से स्वच्छता के समृद्धि को बढ़ावा देना शामिल है। इस वर्ष के अभियान की थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये थीम स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी की भूमिका को रेखांकित करती है। राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन करें। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने आज नेरिस्ट में उन एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया जिन्होंने वर्ष 2025-26 में नई दिल्ली में आयोजित रिपब्लिक डे कैंप, गणतंत्र दिवस परेड और प्रधानमंत्री की रैली में राज्य का प्रतिनिधित्व किया। कैडेट्स को बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में स्थान प्राप्त करना एक दुर्लभ सम्मान और कैडेट्स उनके परिवारों, शैक्षणिक संस्थाओं तथा अरुणाचल प्रदेश की जनता के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए कैडेट्स की भागीदारी का विशेष महत्व है क्योंकि वे देश के समक्ष अरुणाचल प्रदेश के राजदूत के रूप में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे राज्य के अनुशासन, आत्मविश्वास, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवंत परंपराओं, विविध जनजाति समुदायों और प्रदेश के लोगों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हैं। कैडेट्स को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारत और अरुणाचल प्रदेश का भविष्य युवाओं के हाथों में है। उन्होंने कैडेट्स से अपने साथियों और समुदाय के लिए आदर्श बनने तथा समाज और देश के लिए सार्थक योगदान देने का आह्वान किया। अरुणाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष तारक ने आज तिरप जिले के अपने आधिकारिक दौरे के तहत भारतीय खाद्य निगम FCI के द्योमाले स्थित गोदाम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर संयुक्त समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यह दौरा तिरप, चांगलांग, लोअर दिवांग वैली और नामसाई जिले को शामिल करते हुए 4 जिलों के दौरे का हिस्सा है जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन, खाद्यान्न की उपलब्धता और लाभार्थियों के लिए वितरण व्यवस्था का आकलन करना है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कादो निग्योर ने अन्य सांसदों के साथ दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। सम्मेलन में 56 राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन सह निर्वाचन का भी आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में विभिन्न संसदीय और लोकतांत्रिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन का समापन 19 सितंबर 2026 को निर्धारित है। तवांग जिला प्रशासन ने जिले में लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर भूस्खलन, मलबा खिसकने और प्राकृतिक जाल मार्गों के अवरुद्ध होने के बढ़ते खतरे को देखते हुए सार्वजनिक सलाह जारी की है। प्रशासन ने नालों, नदियों और जलधाराओं के आसपास निचले इलाकों तथा भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और संवेदनशील ढलानों तथा जलमार्गों के आसपास आवाजाही से बचने की सलाह दी। लोगों से आधिकारिक सलाह का पालन करने तथा जलमार्गों में किसी भी प्रकार की रुकावट, जलस्तर में अचानक बदलाव, मलबे के खिसकने या ढलान के अस्थिर होने के संकेत मिलने पर तत्काल स्थानीय प्रशासन को सूचित करने का आग्रह किया गया है। इस बीच कीटफेल के सहायक आयुक्त सांग नोरबू लगातार ग्रामीणों को सतर्क रहने और व्हाट्सएप तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सावधानी संबंधी जानकारी साझा कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने लेपारादा जिले के पागी गांव में मुख्यालय के साथ जल संसाधन विभाग WRD के सेंट्रल जोन की स्थापना को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है। नवगठित सेंट्रल जोन के अंतर्गत दापोरिजो और बांगिन WRD सर्कल आएंगे जो अरुणाचल प्रदेश के 11 जिलों को कवर करते हैं। इस सेंट्रल जोन की स्थापना से क्षेत्र में जल संसाधन परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण और निगरानी को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। प्रोफेसर आशा रद्दी को अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पासीघाट का कुलपति नियुक्त किया गया है। कुलपति नियुक्त होने से पहले वे राजीव गांधी विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्रोफेसर और इतिहास विभाग के पूर्व

0: night to take 2-0 lead in the 3-match series. The third and final match of the series will be played at the same venue in Delhi tomorrow. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:55 हुए हैं। श्रोताओं आनंद लीजिए देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमी तराने के अंतर्गत लता मंगेशकर की आवाज में एक देशभक्ति नगमा।

लता मंगेशकर और साथियों के इस देशभक्ति नगमे के साथ ही कार्यक्रम कौमी तराने अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का पहला फरमाइश किया है न्यूमदुम तवांग से संगीत सिरिंग नामगे इटुन और टाशी ट्रेमा, यूसर तवांग से सोनम छोटन और कर्मा छोटन और शोभस्ती तवांग से कंचो टाशी ने।

अगला फरमाइश प्राप्त हुआ है मंडरेलिंग तवांग से तेंजिन डॉलकर से गिरिपा से श्री 420 फिल्म के नगमे का। इस नगमे को लिखा है शैलेंद्र ने, गाया मना डे और आशा भोसले ने, और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार के फरमाइश पर सुनिए दीवाना मस्ताना फिल्म से उदित नारायण, अलका याग्निक और विनोद राठौर का गाया नगमा। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अगला नगमा सुनिए साई की शिरडी महाराष्ट्र से सुरेश मलोडे, वर्षा मलोडे, श्रद्धा मलोडे और मानसी मलोडे के फरमाइश पे धनवान फिल्म से लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर का गाया गीत। हृदयनाथ मंगेशकर द्वारा संगीत इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम फरमाइश किया है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कौशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो ने। आप सभी के फरमाइश पे प्रस्तुत है रोटी फिल्म से किशोर कुमार का गाया गीत, बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दीप्ति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो ने आप सभी के फरमाइश पे प्रस्तुत हैं रोटी फिल्म से किशोर कुमार का गाया गीत, बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: बात सुनो, ऐसा एक बेईमान सुनो।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमे। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक जरूर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत और फिल्म का नाम अवश्य लिखें। इसके साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज़ एट 9।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबला कल। दूसरे T20 मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। श्री चन्नी T20 रेटिंग में 800 रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनी। एशियन गेम 2026 के पदक विजेताओं को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2027 में सीधे एंट्री। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली

0: हाफ मैराथन के फिनिशर मेडल का अनावरण किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जहां भारत का लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबला कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। दूसरे T20 मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: भारत ने अफगानिस्तान को दूसरे T20 मैच में 7 विकेट से हराया। इसी के साथ टीम इंडिया ने 3 मुकाबलों की T20 श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। मुकाबले के 9वें ही गेंद में सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान इब्राहिम ने सिद्दीकुल्ला अटल के साथ दूसरे विकेट के लिए 51 रन जुटाकर अफगानिस्तान को संभालने की कोशिश की, लेकिन इब्राहिम के 37 रन पर आउट होने के बाद टीम लड़खड़ा गई। आलम ये रहा कि 100 के स्कोर तक 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। यहाँ से अनुभवी मोहम्मद नबी और राशिद खान ने मोर्चा संभाला। नबी ने 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 20 रन की अहम पारी खेली। वहीं राशिद खान ने भी 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 28 रन बनाए। इन बल्लेबाजों ने 7वें विकेट के लिए 28 गेंदों में 48 रन की साझेदारी करते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। अफगानिस्तान ने निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 159 रन बनाए। भारत के लिए नीतीश रेड्डी ने 3 विकेट हासिल किए, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट निकाले। इनके अलावा जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई को 1-1 विकेट हाथ लगा। 160 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 31 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी ने विस्फोटक शुरुआत की। दोनों खिलाड़ियों ने 38 गेंदों में 88 रन की साझेदारी की। अभिषेक 19 गेंद में 4 छक्कों और 2 चौकों के साथ 40 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद संजू ने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 4 गेंदों में 11 रन की साझेदारी की। भारत को 99 के स्कोर पर संजू सैमसन के रूप में दूसरा झटका लगा, जो 22 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 4 छक्के और 7 चौके शामिल रहे। यहां से ईशान ने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 22 गेंदों में 24 रन जुटाए। अय्यर 11 गेंदों में इतने ही रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद ईशान ने तिलक वर्मा के साथ चौथे विकेट के लिए 25 गेंदों में 40 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई। ईशान 23 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि तिलक वर्मा ने 14 गेंदों में नाबाद 15 रन बनाए। अफगानिस्तान के लिए 3 विकेट राशिद खान ने हासिल किए। अब अंतिम मुकाबले में भारतीय टीम बाकी खिलाड़ियों को भी मौका देकर टीम में कुछ बदलाव करना चाहेगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन ने बेहतरीन प्रदर्शन कल कर दिखाया और मुकाबले के बाद टीम के सलामी बल्लेबाज संजू ने कहा कि भारतीय टीम का दृष्टिकोण एक यूनिट की तरह खेलना है।
2: In this kind of a space from quite a few years, so I just know how to balance it out. Try to be very positive with your competitors as well. I think they are competitors for the outside world, but we are a team and we are playing for a country and we want to win the game first and then it comes down to the other individual. So we try to be as positive as possible and then whoever is playing, we want them to do well. And we just have to be ready for our own opportunity. I think we can't sulk or we can't be in a negative frame of mind. Ki no yaar. So we try to be positive. We try to contribute in any other manner, whoever is playing.
0: सलामी बल्लेबाज ने कहा कि इस प्रारूप में निरंतरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है।
2: कंसिस्टेंसी इन माई प्रोसेस, कंसिस्टेंसी इन माई प्रिपरेशन, कंसिस्टेंसी इन हाउ आई एम प्रैक्टिसिंग, हाउ आई एम पुटिंग माई हार्ड यार्ड्स इन, आई थिंक दैट्स वेयर आई ट्राई टू फोकस ऑन। यू कांट कंट्रोल द कंसिस्टेंसी इन द रिजल्ट इन दिस फॉर्मेट, सो एज यू नो दैट वी हैव टू स्ट्राइक एट 200 स्ट्राइक रेट एंड यू जस्ट हैव टू hit 6 or 4 of every ball. I think then you can't think about consistency or you can't think about scoring your own runs. I think consistency has to be in the frame of mind which you are looking at and then whatever happens, happens. I think that's what a fearless mindset is called. I think that's where the captain and the coach comes in. I think each and every chat which we have in the dressing room, I think they back you 100%. They want you to go out and play a very fearless kind of a cricket. We have been able to do that in the last match. You saw Abhishek doing it beautifully. I think this match I tried to do it. So yeah, that's what we are trying to achieve as a team.
0: और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, कल आखिरी मुकाबला श्रृंखला का होना है तो ऐसे में एशियन गेम्स भी अभी खेले जाने हैं, से पहले किन खिलाड़ियों को खेलने का कल के मुकाबले

0: मौका मिल सकता है।
1: प्रशांत, एशियन गेम्स के मद्देनजर टीम में बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है, और आखिरी मुकाबले में सलामी जोड़ी में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां वैभव सूर्यवंशी अभिषेक और संजू में से किसी एक की जगह लेते नजर आ सकते हैं। वहीं वॉशिंगटन सुंदर और यश ठाकुर को भी टीम में शामिल किया जा सकता है, और सीरीज जीतने के बाद एशियन गेम्स को ध्यान में रखते हुए जसप्रीत बुमराह को भी आराम देने की कोशिश करेगी मैनेजमेंट।
0: विशेष टीम के जो मिस्ट्री स्पिनर है वरुण चक्रवर्ती, पहले तो श्रृंखला से बाहर हुए और अब एशियन गेम्स से भी बाहर हो गए, तो कितना चुनौतीपूर्ण होगा टीम इंडिया के लिए बिना वरुण चक्रवर्ती के खेलना, क्योंकि लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। अगर हम वर्ल्ड कप में बात कर ले, अपने फ्रेंचाइज के लिए बात कर ले, तो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं वरुण।
1: जी प्रशांत, वरुण का जो स्थान है टीम में वो काफी महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम को ज्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि दूसरे मुकाबले में रवि बिश्नोई ने शानदार प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया था। एशियन गेम्स के लिए विप्रज निकम को उनकी जगह पर टीम में स्थान मिला है, तो देखना यह दिलचस्प होगा कि ये युवा खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए कैसा प्रदर्शन करता नजर आएगा।
0: उधर आईसीसी ने महिला T20 रैंकिंग जारी कर दी है, भारत के कई गेंदबाजों ने ऐतिहासिक रेटिंग हासिल की। विशेष कैसा रहा है रैंकिंग में महिला खिलाड़ियों का स्थान?
1: प्रशांत, श्रीचरणी T20 रैंकिंग में 800 रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बन गई हैं। यह उपलब्धि जो है वो बहुत ही शानदार है, और वो कुल मिलाकर तीसरी गेंदबाज बनी है। एशिया कप 2026 में फाइनल में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट हासिल किए थे 20 रन देकर, और पूरे टूर्नामेंट में 12 विकेट चटकाए थे। श्रीचरणी की जो रेटिंग है वो अभी 804 है, और उनकी जो कंपटीटर हैं वो दीप्ति शर्मा भारतीय खिलाड़ी ही हैं।
0: और श्रोताओं, आपको बता देते हैं कि आईसीसी की ताजा T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में अभिषेक शर्मा को जबरदस्त फायदा पहुंचा है। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले 2 T20 में दमदार प्रदर्शन के साथ अभिषेक बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अभिषेक और ईशान के बीच अब 51 रेटिंग प्वाइंट्स का फासला है। दूसरे T20 में तूफानी अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद संजू सैमसन को भी फायदा हुआ है। सैमसन 4 पायदान ऊपर चढ़कर अब 30वें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत के गेंदबाजों ने भी आईसीसी रैंकिंग में अच्छी बढ़त हासिल की है। वरुण चक्रवर्ती 2 स्थान ऊपर चढ़कर 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उधर साउथहैम्पटन में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 119 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 254 रन बनाए। कप्तान हैरी ब्रुक ने नाबाद 114 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में आज दिल्ली हाफ मैराथन के 21वें संस्करण के लिए फिनिशर मेडल का अनावरण किया। इस मैराथन का आयोजन रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। इसमें भारत और दुनिया भर से हजारों धावक पदक हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। दिल्ली के श्रम, रोजगार और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली हाफ मैराथन दिल्ली के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है, जो देश और दुनिया भर के लोगों को एक साथ लाता है।
2: आप सबसे अपील है, आप सबका आह्वान है कि 18 अक्टूबर को होने वाले दिल्ली हाफ मैराथन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और आइए दिल्ली को एक टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर दोबारा से तैयार करने के संकल्प को पूरा करें।
0: और अब चर्चा मुक्केबाजी पर। एशियन गेम्स 2026 में पदक जीतने वाले मुक्केबाजों को 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का शानदार मौका मिलेगा। ऐसे खिलाड़ियों को 2027 में कजाकिस्तान में होने वाली विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सीधे प्रवेश दिया जाएगा, जो लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए पहला क्वालिफाइंग टूर्नामेंट होगा। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए ज्यादा से ज्यादा बॉक्सरों को क्वालिफाई कराने पर केंद्रित एक विस्तृत सिलेक्शन पॉलिसी जारी की है। यह पॉलिसी वर्ल्ड बॉक्सिंग द्वारा विकसित और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा मंजूर किए गए क्वालिफिकेशन सिस्टम पर आधारित 4 चरणों वाला तरीका बताती है। विशेष वर्ल्ड बॉक्सिंग के नियम के आधार पर पहला क्वालिफाइंग इवेंट कौन सा होने की उम्मीद है?
1: प्रशांत, वर्ल्ड बॉक्सिंग के नियमों के अनुसार 2027 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप पहला क्वालिफाइंग इवेंट होगा। इसके बाद चीन में एशियाई क्वालिफायर और 2028 में 2 वर्ल्ड क्वालिफाइंग टूर्नामेंट होंगे।
0: एशियन गेम्स 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 19 सितंबर से जापान के आईची नागोया में भारत के 503 खिलाड़ी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। भारत इस बार कुल 35 खेलों में हिस्सा लेने वाला है। हालांकि कुछ खेल ऐसे हैं जिनमें

0: देश को पदक जीतने की पूरी संभावना है। आइए ऐसे ही पांच खेलों के बारे में आपको बताते हैं।
1: एशियन गेम्स के इतिहास में भारत ने सबसे ज्यादा मेडल एथलेटिक्स में हासिल किए हैं। एथलेटिक्स में भारत ने एशियन गेम्स के 19 संस्करण में अब तक कुल 85 स्वर्ण, 102 रजत और 96 कांस्य सहित कुल 283 पदक जीते हैं। नीरज चोपड़ा की गैर मौजूदगी के बावजूद इस खेल में भारत को मुरली श्रीशंकर, गुलवीर सिंह, अविनाश साबले, तजेंद्र पाल सिंह, पारुल चौधरी, राजेश रमेश और रोहित यादव से पदक की उम्मीदें होंगी। एथलेटिक्स के बाद एशियन गेम्स में भारत को निशानेबाजी में सबसे ज्यादा कामयाबी मिली है। निशानेबाजी में भारत ने अब तक कुल 80 पदक जीते हैं, जिसमें 16 स्वर्ण, 30 रजत और 34 कांस्य पदक शामिल हैं। पिछले एशियन गेम्स में निशानेबाजी में भारत ने कुल 22 पदक जीते थे। मनु भाकर, ईशा सिंह, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, आशी चौकसे, सुरुचि से पदक की आस होगी। भारत को रेसलिंग में अमन सहरावत, अंतिम पंघाल, दीपक पूनिया, मनीषा और सुजीत कलकल से पदक की उम्मीदें रहेंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रेसलिंग को शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में भारतीय पहलवान एशियन गेम्स में दमदार प्रदर्शन करने को बेकरार होंगे। रेसलिंग में अब तक भारत ने कुल 65 पदक जीते हैं, जिसमें 11 स्वर्ण, 15 रजत और 39 कांस्य पदक शामिल हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों के ऐतिहासिक प्रदर्शन ने एशियन गेम्स के लिए नई उम्मीदें जगा दी हैं। महिला मुक्केबाज साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, लवलीना बोरगोहेन से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं जादूमणि सिंह, सचिन सिवाच, अंकुश और नरेंद्र बेरवार मेडल लाने के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं क्रिकेट में भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में हाल ही में एशिया कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम 18 सितंबर को टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेलेगी। वहीं पुरुष क्रिकेट टीम 28 सितंबर को अपना पहला मैच खेलेगी। पिछले एशियन गेम्स में भारत की पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया था। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात निशानेबाजी पर। दक्षिण कोरिया के चांगवोन में विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप का समापन हो गया है। मिली शाह, मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम स्पर्धा और व्यक्तिगत स्पर्धाओं में कई पदक अपने नाम किए। सुनते हैं ये खास रिपोर्ट।
2: विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में मिली शाह, मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल R2 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। राकेश निदागुंडी, आनंदा कृष्णा और स्वरूप उनहालकर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल R1 स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला टीम कुल 1878.6 अंक के साथ पहले स्थान पर रही। मोना को व्यक्तिगत वर्ग में रजत और अवनी को कांस्य पदक मिला। और आपको बता दें कि R1 वर्ग में हाथों या पैरों में विकलांगता वाले पुरुष एथलीट 10 मीटर दूर स्थित टारगेट पर निशाना लगाने के लिए खड़े या बैठे हुए अपनी राइफल का पूरा वजन खुद ही संभालते हैं। R2 में ऐसी महिला प्रतियोगी शामिल होती हैं जिनके पैरों में अक्षमता होती है और जो खड़े होकर या बैठकर शूटिंग करते समय राइफल को खुद ही संभालती हैं। ऐसे में इनका ये प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ा रहा है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ की एक विशेष NIA अदालत ने बस्तर जिले में 2013

0: के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रूपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रूपये पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
2: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रूपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रूपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र आरसीएमसी या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली

0: डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान भाजपा द्वारा देशभर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
1: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
2: स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने।
0: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
3: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता इस सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से हैं। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
0: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
4: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की नौकरियां बची रहें और ऑटोमोबाइल सेक्टर तरक्की करता रहे, तो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इन वैश्विक रुझानों के साथ बदलना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को आज फांसी की सजा

0: बनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। एनआईए ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, अभिनेता अनंत नाग का सरल अभिनय पर प्रेक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। मिंचिना ओटा, हमसे गीते, अंकुर, मंथन, मालगुडी डेज, गणेशन मधुवे, गौरी गणेशा और 250 से ज्यादा फिल्मों में उनका पात्र अभिनय ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। अभिनेता ने 5 दशक के अपने फिल्म जगत के सफर में कई फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ये पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for greater industry participation in emerging technologies to make India an early leader. Leading global CEOs at Semiconductor Roundtable express confidence in India's potential. Union Cabinet approves hike in EPFO wage ceiling from 15,000 to 25,000 rupees per month. 51 lakh more employees to be benefited. Government declares Pakistan-based Shahzad Bhatti Network a terrorist organization under UAPA. New Delhi expresses deep concern at drone attack near Makkah in Saudi Arabia, urges early restoration of peace and stability in the region. A special NIA court in Chhattisgarh sentences